वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी। देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

0: हो।
1: ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ।

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

0: scraps, MSN chats, and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस आएगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। रीवाइंड योर हार्ट, रीवाइंड योर वीकेंड। Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
3: All weekend long.
2: Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
5: चार या
4: पाँच? पाँच।
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
2: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Oh my dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Oh My Dog, releasing 4th September at cinemas across the UAE. Distributed by Fars Film. Book your tickets now. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यही 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच? पाँच।
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package, and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यही। चार पांच दिन में?
4: चार या
3: पांच? पांच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 106.2

0: Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: My Dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Oh My Dog, releasing 4th September at cinemas across the UAE. Distributed by Fars Film. Book your tickets now.
4: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
6: दो या चार?
5: चार।
6: कब तक वापस लौटेगा?
5: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
6: चार या
5: पांच?
7: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Point 2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: 92, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Oh my dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Oh my dog, releasing 4th September at cinemas across the UAE. Distributed by Fars Film. Book your tickets now.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 The Beat of Bollywood Big Big 106.2

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: 36.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: रखना सदा।
1: इस हफ्ते और नंबर 26 इसी के साथ और नंबर 25
2: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो
1: पति पत्नी और वो दो से आदित्य रिखारी श्रेया घोषाल ऑन द वोकल्स
3: नंबर 26

थिंक अगर हम न्यू ईयर्स का भी काउंटडाउन करेंगे ना, धुरंधर एंड धुरंधर 2 के गाने उस काउंटडाउन में 100% होंगे. आई थिंक ब्रिलियंट म्यूजिक, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2, स्टिल स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नंबर 24. प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक, यह है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन मानसी. नाउ मूविंग ऑन टू अ सॉन्ग विच आई टोटली लव, बट मूवी को मिक्स रिव्यूज मिले हैं ऑन 23. वी गॉट दिस वन फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, कॉमेडी थ्रिलर है एंड ये थिएटर्स में आई थी ऑन द 30th ऑफ जुलाई. इसे लिखा भी और डायरेक्ट किया है विवेक अग्रवाल ने. द मूवी मार्क्स द फर्स्ट सोलो लीड रोल ऑफ द पॉपुलर डांसर एंड एक्टर राघव जुयाल. सेट इन लंदन, द स्टोरी फॉलोज राघव जुयाल हु प्लेज अजय इन द मूवी. स्ट्रगलिंग ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर है हु ड्रीम्स ऑफ हिटिंग इट बिग इन बॉलीवुड एंड आफ्टर रनिंग अ मैसिव क्रिकेट गैम्बलिंग डेट ही बोरोज अराउंड 10,000 pounds फ्रॉम लोकल गून जिनका नाम है संजय कपूर. एंड उसके बाद क्या होता है, इज वेरी वेरी क्योटिक. द मूवी हैज सम फन पार्ट्स बट आई थिंक कॉन्सेप्ट काफी डन एंड डस्टेड है. बट आई लव राघव जुयाल इन द मूवी एंड आई टोटली लव द रीमेक ऑफ इस हफ्ते नंबर 23 पर. इसी के साथ ऑन 22 वी हैव गॉट अनदर वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, तनिष्क बागची विद

आई थिंक मिलेनियल्स ने ये प्रूव कर दिया कि हमारा रिश्ता एंड हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स इमरान हाशमी बहुत पुरानी है. दैट इज व्हाई मेकिंग आवारापन 2 वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इमरान हाशमी सोलो हिट एवर. This is the Big Bollywood Countdown. Mansi playing you the top 40 hits of the week. Now moving on to Gaana number 20. Very, very strong. The entire album is strong. One of the biggest franchises ever. I'm talking about Aditya Dhar ki Dhurandhar se.

0: अब कहा जा रहा है कि इसे मुकाबला दे सकती है ओनली वन मूवी एंड दैट इज सुपरस्टार यश की टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज एवर एंड सो फार द मूवी हैज कलेक्टेड 328.45 crores, स्टिल नॉट अहेड ऑफ धुरंधर फ्रेंचाइजी. But had a historic opening day. Toxic smashed records on its opening day, which was 26th of August, pulling a jaw-dropping 101.10 crores net in India and 140.75 crores gross worldwide, heavily carried by the Hindi and the Kannada markets. In fact, English mein bhi ye movie simultaneously release hui thi, so sare versions available hain. I haven't seen the movie yet, but plan hai mera ke main at least ek movie Yash, superstar Yash ki theater mein dekh ke aaun.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बता ना.
4: टेंशन नहीं लेने का भाई. अलरास है ना?
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो. मिडिल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन. हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते.
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडिल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

0: my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Playing in the top 40 biggest hits of the week. ये है Big Bollywood Countdown. Top 12 की बारी आ गई है. वैसे इस हफ्ते number 1 पे कौन सा गाना होगा? For that, keep sending me your DMs. You can head to our Instagram page, 106.2 Big FM, and let me know कि कौन सा गाना आपके हिसाब से number 1 पे होना चाहिए चार्ट्स पे. फिलहाल moving on to गाना number 12. Original गाना Mondal Brothers ने गाया था, but recreate किया गया for the movie पति पत्नी और वो दो, and of course बादशाह का तड़का भी लगा इस गाने पे.

0: Jasmine Sandler, Satinder Sirtaaj on the vocals. I have to say one of my all-time favorites. And I know इस गाने को भी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, but ये गाना रहेगा हमारी playlist में रहेगा for years and years. Playing you the top 40 biggest hits of the week. This is the Big Bollywood Countdown. That was Jaiye Sajna, number 10 this week. And now we're moving on to number 9. Again, Dhurandhar 2 से ही गाना. मैंने कहा ना कि top 40 में से at least 10 गाने धुरंधर 2 के ही होते हैं. अब म्यूजिक इतना माइंड ब्लोइंग है. आई थिंक आदित्य धर ने कमाल किया है शाश्वत सचदेव के साथ. व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, दे हैव यूज्ड सॉन्ग्स दैट वर लॉन्ग लॉस्ट एंड सिचुएशंस जिनमें हमने उन गानों को एंटिसिपेट ही नहीं किया था. चाहे द यूज ऑफ ओए ओए हो, तम्मा तम्मा या फिर दिस वन ऑन नंबर 9. मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में अगर कभी कोई एग्जाम हुआ ऑन धुरंधर, आई विल डेफिनेटली बी टॉप 3 में से, क्योंकि मैंने इतनी लंबी मूवी ऑलमोस्ट 3 बार पूरी देख लिया. आई लव धुरंधर द फ्रेंचाइजी. इस हफ्ते ऑन नंबर 9, इसी के साथ ऑन नंबर 8 कुणाल एली और दिया, ब्यूटिफुल इटली एंड अ कॉम्प्लिकेटेड लव ट्राइंगल, दैट्स व्हाट कॉकटेल 2 इज. Kriti Sanon is looking stunning. The location is fantastic. Wow. देखने के बाद लगेगा कि backpack करते हैं, vacation पे जाते हैं. वैसे vacation से याद आया, we're taking you to Germany this year and all the details you'll get on our Instagram page. So go and check it out. 106.2 Big FM.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
4: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. DNC Supply.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 9.

0: Welcome to the Jungle, one of the biggest ensemble casts for a Bollywood movie ever. This week on number 7, playing in the top 40 biggest hits of the week, you have Big Bollywood Countdown. I'm very, very excited to see Akshay Kumar in a very different role. He's playing a negative character after years, after ages. मूवी का नाम हैवान 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है. साथ में सैफ अली खान है, डायरेक्ट करा है द लेजेंडरी प्रियदर्शन ने. सो या वी हैव अनदर अक्षय कुमार रिलीज दिस मंथ ऑन द 11th ऑफ सितंबर. ऐसे नहीं कहते हैं कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं. बैक टू बैक ही कीप्स रिलीजिंग मूवीज एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मूवीज अक्षय कुमार की पिछले कुछ सालों से सिमिलर जॉनर की थी. सो दिस इज गोइंग टू बी अ चेंज, breaking a bit of monotony. I'm talking about Hewan that releases on the 11th. But I'll moving on. Is hafte on number 6. Shashwat Sachdev, Dhurandhar 2 se. On number 5. Hey Jawani to. एक और रिक्रिएटेड गाना जावेद मोहसिन एंड रिक्रिएटेड फॉर है जवानी तो इश्क होना है, स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन नंबर 5.
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, ऑल द म्यूजिक आई लव, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
3: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

ओरिजिनल गाना बॉम्बे रॉकर्स का years later recreated for Dhurandhar 2 इस हफ्ते ऑन नंबर 2. वाओ दैट राइम्ड. फिलहाल प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक मानसी. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम कि इस हफ्ते गाना नंबर 1 कौन सा होगा. 80% 80% of you guessed it absolutely correct. If we have Imran Hashmi, I don't think so. कोई और नंबर 1 की जगह ले सकता है.

तीन हफ्ते से कंसिस्टेंटली ऑन नंबर वन फॉर रीजन बिकॉज अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, अगेन नंबर वन पे, तो फिर आओ दोबारा. इसी के साथ मेरा यहाँ से आने का नहीं जाने का टाइम. आई विल नाउ सी यू ऑन मंडे एंड अंटिल देन यू कैन से हेलो टू अस ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. हैव अ ब्रिलियंट वीकेंड. नंबर 1.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभ, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: UAE, the biggest laptop buyback is back at Sharif DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply. Big 106.2.

It's time for the most laid back, chilled out show over the weekend. शो का नाम है द बिग बिंज विद मी सेड. और क्या काम करता हूँ मैं, आपके हार्ड अर्न्ड वीकेंड का इंश्योर करता हूँ कि एक सेकंड भी वेस्ट ना हो इन यू नो सिफ्टिंग थ्रू ऑल ऑफ दोज रिव्यूज, क्या देखें क्या नहीं देखें. ये इन डिसीजन को डिसीजन में बदलने में आपकी मदद करता हूँ. वी फोकस ऑन OTT मूवीज, OTT शोज. दोज ऑप्शंस आर टू मेनी राइट दीज डेज. उसमें से कौन सी एक चीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, इस बात पे क्लैरिटी हम लोग लाने वाले हैं. व्हाट इज दैट वन शो और मूवी दैट वी गोना टॉक अबाउट टुडे? अनुराग कश्यप बॉबी देओल की बंदर. सो स्ट्रीम इट, स्किप इट, गुड पार्ट्स बैड पार्ट्स ऑल ऑफ दैट कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज.

King, larger than life, Bobby Deol nahi hai, who we've seen in films like Animal. His character here is insecure, frightened, aging, losing relevance. It's almost like Bobby playing Bobby before he did Ashram, right? He's gradually losing control over his entire life, making questionable decisions. There's something almost pathetic about him. And kabhi kabhi to aisa lagta hai that Bobby Deol is actually very good at allowing himself to look weak. बहुत कम ऐसे actors हैं Bollywood में जो ऐसे script के लिए हाँ कहेंगे जिसमें कि they are like completely vulnerable and doing really crazy things in life and most importantly looking weak on screen. Bobby Deol ने हाँ कर दी, बहुत बड़ी बात है यार. The other thing that works is the world जो कि अनुराग कश्यप ने create की. He's a champion at doing that. And एक बार Summer यानी कि Bobby Deol का character enters the police and the prison system, ये फिल्म काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक, डीपली अनकंफर्टेबल हो जाती है. एंड देन इसको एक कन्वेंशनल क्राइम थ्रिलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई फाउंड अबाउट दिस फिल्म, राइट? इट्स मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, इन डिस्कवरिंग कि एक बार सोसाइटी किसी बंदे बंदी पे एक ओपिनियन जाहिर कर देता है, इट काइंड ऑफ डिक्लेयर्स एन ओपिनियन अबाउट समबडी, देन वॉट हैपन्स टू दैट कैरेक्टर वन सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड द सिस्टम हैव ऑलरेडी त्यागोड somebody, उसके बाद क्या दशा होती है. It's a very compelling story. Sania Malhotra की performance is absolutely fabulous. And most importantly, Bandar gives you something to argue about. ये नहीं कि film को आप cinema hall में छोड़ पाओगे. You'll be talking about it, discussing, arguing about it with your friends and family and whoever's watched it for days after. So those are the good things about this film. Coming up in just a while, what are the not so good things about Anurag Kashyap and Bobby Deol's Bandar? Right here on The Big Binge with me, Sid.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. We're talking about Anurag Kashyap's Bandar. And here are the not so good things about this movie now out on Z5. Now, the thing is, ki jo kahani hai na, kafi complicated hai. It is a very deeply sentimental and very important kind of a kahani. But when you have, you know, a story like this, you expect the opinions to be a bit layered, right? ये फिल्म काफ़ी वन साइडेड लगी मुझे कि इनका जो ओपिनियन है द फिल्म मेकर्स द राइटर्स इनका ओपिनियन इज क्वाइट क्लियर एंड वेरी वेरी वन साइडेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सो दैट इज वन थिंग अगर मैं बाल की खाल निकालूँ तो एंड द सेकेंड थिंग इज के द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज नॉट एज ग्रिपिंग एज द फर्स्ट हाफ कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी फिल्म रेपिटेटिव लगती है एंड पर्टिकुलरली जब वो जेल के अंदर प्रिजन लीगल सिस्टम की बात होती है तो थोड़ा सा हाँ ये देखा देखा सा लगता है वहाँ पर सो इनकेस यू एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ट्विस्टी कोर्टरूम थ्रिलर बेसिकली अगर आप सेक्शन 375 वर्सेस बंदर करो तो देन सेक्शन 375 इज क्लियरली द विनर इनसाइड द कोर्टरूम बट इट्स डार्कर स्लोअर मच मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमिलिएशन एंड या मतलब कैरेक्टर स्टडी ये है लेकिन उसमें भी उतना लेयर्ड नहीं है जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नाउ इट ब्रिंग्स अस टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराग कश्यप की बंदर देखी जाए या नहीं देखी जाए स्ट्रीम इट और स्किप इट कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल राइट हियर ऑन द बिग बेंच विद मी सिड

This is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Gyan Baji बहुत हो गई, अब बताओ Sid, देखें कि नहीं देखें? अनुराग कश्यप, बॉबी देओल की बंदर, it's out, it's streaming on Z5. Should you stream it or should you skip it? For me, बंदर is a definite stream. इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस हर बात से agree करता हूँ जो कि फिल्म कह रही है. In fact, कुछ choices ऐसे हैं that might actually bother you, लेकिन that's partly why it works, right? Bobby Deol को एक सबसे interesting role में अगर आप देखना चाहते हैं in years, and I'm not talking about those, you know, swagger भरे animal या फिर आश्रम वाला वो role. It feels like Anurag Kashyap is returning to that, you know, that kind of zone of film that we are big fans of, right? वो जो Dev D type की फिल्में थी, that is actually what Bandar is most similar to. Grimy, uncomfortable territory that he handles best. And by the end of it, aapka ek opinion zarur hoga. You might love it, you might not like it very much, but you definitely will walk away with an opinion after watching this film. So, if you're watching it with the expectation ke har ek frame mein main entertain honga, to aisa shayad na ho in the conventional sense. It's dark, it's uncomfortable, this film is. And occasionally, it does feel ke yaar, थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन अगर आपको उस टाइप की फिल्में पसंद हैं दैट लीव यू डिस्कसिंग द कैरेक्टर्स, द स्टोरी, द फिल्म, यू डोंट वांट टू लीव अ फिल्म इनसाइड द सिनेमा हॉल, देन बंदर इज वर्थ द वॉच. इट्स स्ट्रीमिंग नाउ ऑन Z5 ऑन द बिग बिंज. माय वर्ड इट इज, स्ट्रीम इट. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड, ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

और इट्स टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम द बिग बिन्स राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हर वीकेंड ये वो शो है जिसमें हम लोग किसी ना किसी ओटीटी फिल्म या ओटीटी शो के बारे में बात करते हैं, वेदर यू शुड वॉच इट, वेदर यू शुड नॉट वॉच इट, व्हाट आर द गुड पार्ट्स, व्हाट आर द बैड पार्ट्स। आज का शो आपको कैसा लगा, यू कैन ऑलवेज लीव अ कॉमेंट ऑन आर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफ एम, दैट्स आर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफ एम। आई एम सिड सेठ, SIDSETH। इफ देयर इज अ रिकमेंडेशन दैट यू हैव, कोई ऐसा शो है, कोई ऐसी फिल्म है ओटीटी वाली जो आपकी वॉचलिस्ट पे बहुत टाइम से है और आप कभी हाँ कभी ना कर रहे हैं, देन आई कुड वॉच इट फॉर यू एंड देन डू अ बिट ऑफ अ रिव्यू और राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड एवरी सैटरडे फ्रॉम 7 to 9 PM एंड देन संडे फ्रॉम 10 AM to 12 PM राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।